0: सीधा कुरा प्रश्न विचार
1: रोग लुकाएर नराखौ समयमै परीक्षण गरौ
2: थप जानकारीका लागि आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय काठमाडौँ फोन 01 41 10 6 96 41

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: रेडियो दिली बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियो
1: रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज हामी सबैको साझा आवाज

0: यो रेडियो दिदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्न को ठीक 12 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: निकट माता दी बहिनी निकट माता दी बहिनी।

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानली जाँची मरी बुझी मरी ब्याङ्गै आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललना खैबै बिनी लिङ खुल्दै भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजी पिमिलो खन यामो बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दी वेबसाइट ना URL चेक लना आक्षेप घटना तल आपीबै लागि समय समय आफै न पासपोर्ट फेरदिल परि मै तो तारी शङ्ख लैदी विषा बैङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तना ठगी तब त क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैङ्गर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

बीमा को लाभ दिए आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों

0: Patagonia.
1: Extreme energy drink.
2: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मणि भंडारी चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में
3: इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर राजन मणि भंडारी आइतबार देखि शुक्रवार सम्म साझा पांच बजे पछि अथवा आवश्यकता अनुसार यस चरक मेमोरियल हॉस्पिटल नागढुंगा पोखरा में आउनु हुने भएकोले समयमै आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य लाभ गर्नुहोला।
2: उपचार सेवाहरू
3: भेरिकोस भेनको लेजर उपचार खुट्टाका सुन्निएका तथा फुलेका नसा लेजर प्रविधि बिना ठूलो चिरफार उपचार करने विधि
2: अल्ट्रासाउंड तथा सिटी गाइडेड बायोप्सी प्रक्रिया मासु को टिश्यू नमूना लिएर रोग जस्ते ट्यूमर पता लगाउने प्रक्रिया
3: रक्तनाली संबंधी रोगहरूको उपचार एंजियोप्लास्टी स्टन्ट राख्ने प्रक्रिया इम्बोलाइजेशन
2: कैंसर उपचार ट्यूमर एब्लेशन तथा विशेष थेरापी सानो चिरफार मिनिमल इन्वेसिव विधि ट्यूमर नष्ट करने उपचार
3: शरीर में जमा भएको पस वा असामान्य तरल पदार्थ निकाल्ने प्रक्रिया
2: पाठीघरको मासु युटेरिन फाइब्राइड एम्बोलाइजेशन पाठीघरमा भएका फाइब्राइड मासुका गाँठालाई शल्यक्रिया नगरी उपचार गर्ने विधि आदि
3: थप जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल नागढुङ्गा पोखरा फोन 061582778852279582780

इजी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइफ्स गुड.

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्स मा पनि उपलब्ध छ।
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले जाजीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललना खैबै बिनी लिंक खुल्दियो भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजित बिमिलो खनयामो बिमारी छानले खना दे खुल्दिगो वेबसाइटैना यूआरएल चेक लना आख्याबा घटना तल आफैबै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परिमो नै तोय तारी शंख लैदी भिसा बैंगरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगी तब त क्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।

को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जीऊ।

0: अनि तयो कागज केमे थिए वा
1: अ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लै वदि
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिसरी आइर ब्लक लै र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: अ
1: सर चाहिँ तले लग पर्दि
0: समलल पति न आफैन मोबाइल नम्बर फेरदिया बदेर ब्लक तय विषय आफैन ब्याङ्क देबिनी जानकारी पिन परिम दे आफैन ब्याङ्क खातैन जानकारी अरुइन योरी थनी प्रज्ञा सचेत तल परिम
1: सतर्क तन ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ ब्याङ्कर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ ब्याङ्क सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी 95 थोप्लो

0: ओम श्री दक्षिण महाकाली क्रसर उद्योग लस्सी पर्वत
1: इंजीनियर गुणस्तर प्रमाणित अत्याधुनिक मेसिन द्वारा क्रसिंग विभिन्न साइज का घिट्टी इट्टा चिप्स डस्ट वाशिंग बालुआ बाटो खन्न का एक्जावेटर लोडर
0: साथ ही संपूर्ण सामान मेसिन द्वारा लोडिंग को व्यवस्था कुस्मा बागलुंग मैग्दी को संगम पर्वत को लस्ती में अवस्थित मजबूत भविष्य को विश्वासिलो साथी ओम श्री दक्षिण महाकाली क्रसर उद्योग मालढुंगा देखि बेनी जाने बाटो में लस्ती बजार पर्वत
1: ओम 068-26-144 98-510-16-094 98-476-39691
2: चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग गोप्य विवरण आरी खाई बिले तुई माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषया न्यो कॉल पर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषया बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठजर क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जन हितरी जारी संदेश
3: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैभरिलाई।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: Radio.
1: Extreme energy drink.
2: निकट माता दी बहिनी, निकट माता दी बहिनी।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले बिहानको ठीक पाँच बज्यो।